जा सारे कर दिए ले जा लाडा परी विदाई, जा सारे कर दिए ले जा लाडा परी विदाई।

E vi per agna jaina, e vi per agna jaina, ma pian, tere viran la de lagna. E vi per agna jaina, ma pian, tere viran la de lagna. Tere vi ma pian ti e jagdi, tere ami ma pian ti e jag, tiri te ni bhai. जा सोरे कर दिए ले जा लाडा परी विदाई। जा सोरे कर दिए ले जा लाडा परी विदाई। अच त्रिंजन पींगा विसर गईया, त्रिंजन पींगा विसर गईया, सखियां सहेलियां विछड़ गईया।

होई। जगती रीत अवली अगे जोर नहीं चलिया कोई, जगती रीत अवली अगे जोर नहीं चलिया कोई। पटोलियां दी खेड मुक्की, पटोलियां दी खेड मुक्की, वीरां संग रोक मनाई पटोले।

इस मिट्टी दे उत्ते खड़के तू कर दाए मनमानी, भला ना लोचे किसे दा बंदिया कर दाए नित हानी। मिट्टी सब कुछ चुप कर सहंदी रख।

ये चांद बीत जमानों का आईना होगा, ये चांद बीत जमानों का आईना होगा। भट्ट

बरसता भीगता मौसम धुआं धुआं होगा, बरसता भीगता मौसम धुआं धुआं होगा, पिघलती शम्मों पे दिल का मेरे गुमां होगा, हथेलियों की ही ना या

0: गली के मोड़ पे सुना सा कोई दरवाजा, गली के मोड़ पे सुना सा कोई दरवाजा, तरसती आंखों से रास्ता किसी का देखेगा, निगाह दूर तलक जाके लौट आएगी,
1: क्या बात है।
0: निगाह दूर तलक जा

0: बस
1: वधिया। एक वैसे लास्ट वाला
0: खैर
1: क्या
0: जो
1: होने
0: जी,
1: वाला है?
0: थैंक यू जी, बहुत
1: नहीं
0: बहुत शुक्रिया।
1: एक एक
0: हाँ
1: नहीं
0: जी
1: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं एक
0: नहीं
1: लाइन हो रहा है जी।
0: अंदर
1: मैं
0: वो
1: जी
0: सिकंदर
1: मेन
0: क्या
1: लाइन
0: था
1: हो रहा है कि
0: जिसने जी।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं
0: हाँ
1: नहीं नहीं मेन लाइन है कि ओके ना,

पै गईयां ने मेरे पल्ले सजना दर्द जुदाइयां सबे एक पासे मेरे ऐब खलोते दूजे पासे खुदाइयां सबे पै गईयां ने मेरे पल्ले सजना दर्द जुदाइयां सबे एक पासे मेरे ऐब खलोते दूजे पासे खुदाइयां सबे चलिए ता एक कर्म कमानी।

मैं सदा तेरे नादार उड़ाने हानी निकल गया दार उड़ा मंजिल दे वाले चले सीनी मंजिल दा हुन राए थोड़ा। मैं सदा तेरे रादा डोड़ा रेहानी निकल गया रादा रोड़ा मंजिल दे वाले चले सीनी मंजिल दा हुन राए थोड़ा। मेरे कुप हनेरे नू

अपने वीरा नाल माए रल के मैं रहंदी सी, तेरे कर बैठी माए दस तेनू की कहंदी सी। जुदा अपने तो कीता माए, जुदा अपने तो कीता माए, तू तो दुख भी ना फोले नी, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए कंधा दे ओले नी। तिया तन ने बेगाना माए, तिया तन ने बेगाना माए, सच कर दी।

एक ऐसा फर्ज निभाया तू, सारे बुक बुक रोंदे माए, सारे बुक बुक रोंदे माए, मोहो कोई ना बोले नी, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए, कंधा दे ओले नी। छड़ चली अज माए बाबले दी गली में, जी पर के रोवांगी माए, सोरे बैठ के कली में। छड़ चली।

गई जिंद वादियां चे डुब गई जे समतरी जांदे ओ डुब जाना अजे भी वादे करी जांदे सूली उत्ते चढ़ के मैं ता जरकिया भी नहीं सूली उत्ते चढ़ के मैं ता जरकिया भी नहीं ओ अपने परछावे तो ओ अपने परछावे तो आपे डरी जांदे ओ डुब जाना अजे भी वादे करी जांदे जिंद वादियां चे डुब गई जिंद वादियां चे डुब गई जे समतरी जांदे ओ डुब जाना अजे भी वादे करी जांदे चुक लवा जे सिरे ओदा निकल जाए दम चुक लवा जे सिरे ओदा निकल जाए दम की करां जे आपे चे की करां जे आपे चे।

ओ डूब जाना अजे भी वादे करी जांदे। भगत सिंह ते कातलां दी गल पुरानी आख दे, भगत सिंह ते कातलां दी गल पुरानी आख दे। ए कौन जो हक्कां लई, ए कौन जो हक्कां लई सूली चढ़ी जांदे। ओ डूब जाना अजे भी वादे करी जांदे। जिंद वादिया चे डूब गई, जिंद वादिया चे डूब गई जे संतरी जांदे। ओ डूब जाना अजे भी वादे करी जांदे। जिस चेहरे तेरा ऐ जिस्म लोहा हुंदा लाखा नहीं, जिस चेहरे तेरा ऐ जिस्म लोहा।

चाहत के नगमे चाहे तो आहें सर्द मिली, दिल के बोझ को दूना कर गया जो गम खार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी

पीड़ ता है पर मिला विचों गुम है। मिले वर्गी पीड़ता है पर मिला विचों गुम है।

0: महानगर दिया रोशनियां दे। समझी आ शेर काबिल गौर आ।
1: जी जी जी बहुत बहुत
0: महानगर कदे कदे ही एक करिश्मा होवे, महानगर विच कदे कदे ही एक करिश्मा होवे, अनजाना ही राही कोई, अनजाना ही राही कोई, मिल के

0: जी जनाब।
1: वाह वाह वाह, क्या बताऊं। मैं कहता हूँ पूरे जबरदस्त आइडिया बन गया जी। मैं कमलना कमलना, बहुत ही खूब बहुत ही खूब। ते इन्नी
0: जी जनाब।
1: खूबसूरती ना तुसी गाया, ते गीत दी चोण बड़ी वधिया कीती आ। नाल ही अपने बलबीर सिंह सैनी जी कहिंदे जी, मनदीप जसी जी कहिंदे मेरा पूरा आशीर्वाद है, बहुत कमाल गा रहे जी, कहिंदे कमाल है,
0: धन्यवाद जी,
1: एंड
0: धन्यवाद
1: हो गया।
0: सैनी साहब
1: ते
0: ते।
1: राजन सैनी जी और ने भी लिखा है, कहिंदे बहुत वधिया जसी जी, कहिंदे भी गिद्दड़ वाहे तक हिंदी पहुंच गई है, सलूट हिंदी वाली भैन जी नूं, हैप्पी टीचर डे।
0: सही है जी, सही है जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी
0: सर।
1: शुक्रिया जी, मोहब्बत जिंदाबाद, जिंदगी जिंदाबाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया,
0: श्रीकाल जनाब।
1: सत श्रीकाल जी। जी दोस्तों, भाई मनदीप जसी जी होरां ने कमाल कर दिता। मलेरकोटला तो जसी चाहल जी प्रोग्राम नु सुन रहे ने, ते उन्हां दा भी बहुत बहुत स्वागत जी आया नु, जलौर सिंह जी जी आया नु, क्या बात है। रजिंदर कुमार जीरा जी, बहुत बहुत स्वागत। मोहम्मद बख्शी जी सुन रहे ने प्रोग्राम नु दुबई तो, उन्हां दा भी बहुत बहुत स्वागत जी आया नु जी। दोस्तों इस वेले अपने नाल महक दे बोल जानी के भाई मक्खन शर्मा जी मौजूद ने महफल दे विच। स्वागत है जी शर्मा जी, बहुत बहुत जी आया नु, खुश आमदीद।
0: सत श्री अकाल शमी जी। अच्छी
1: सत श्री अकाल जी।
0: फिर मैं क्या गुआंढिया तो फिर कट्ठे चलेंगे है
1: नहीं
0: ना
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, क्या बात है।
0: जी। ते बाकी ना शमी जी, मैंने तो भरा हूं पता लग्या भी टीचर डे ते
1: जी
0: मैं गीत लिख छड़िया।
1: जी
0: ते चलो आप होर सुना देंगे। ते फिर भी टीचर नु बई सत श्री अकाल, सलाम, अदब, इन्हां दे
1: जी
0: करके असीं तुहाडे नाल जुड़े हां जी।
1: क्या बात है जी, बिल्कुल जी बिल्कुल, साडे वल्लों भी यही है जी।
0: ते इन्हां दी मेहरबानी नाल ही असीं जो गल्लबात कर रहे हां ना,
1: जी
0: तां इन्हां दी मेहरबानी है ना जी।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल।
0: ते टीचर शमी जी, देखो कई कीता मैं कहना भी साडे कहना जी टीचर सीगे प्राइमरी बेचारे जगजीत सिंह मान,
1: जी
0: ते साडे गिद्दड़वाही रहिंदे उह, मेरे ते जस्सी दे विचाले च रहिंदे आ।
1: ठीक है जी।
0: ते उन्होंने की कहना जी, जे किसी ने साडे बच्चों को पढ़े तो कहना अद्धी छुट्टी वेले तो मैं चलिया जी, क्यों रोटी नहीं लेके आया, उरे आ रहे हाँ, कहना चक दो रोटियां मेरे लिया से दो मैंने दे, चार होंगे दो खवाना, कहना खा गया।
1: वाह क्या बता जी।
0: ते जे किसी ने कहना ना जी भाई मैं मास्टर जी कल नहीं आना, क्यों मैं फीस भरनी है फीस, वह कहना फीस तो 75,000 पानी है, 2 रुपये मापे भर दू आज कल।
1: वाह बहुत खूब,
0: ते
1: क्या बात
0: जे किसी ने समझ भज जाना ना घरे,
1: जी।
0: वो साडे पिंड च परिवार वांगू सी, उन्हें ना जी आपकी मां की बुक्कल चो बांह फड़ लेनी ते खिंच लेना, भूत नहीं दिया भज जाएगा हुण तू, कुट के लैके आउंदा जी उहनूं उत्थों, कोई उहदे मूहरे बोलदा नहीं सी।
1: क्या बता
0: ते बच्चे पढ़े, देखो तुसीं मन्ना नहीं है जी,
1: जी
0: मेरे चारे बेटे उहदे कोलों पढ़े जी, ते चारे
1: वाह
0: टॉप दियां नौकरियां ते है।
1: वाह जी वाह, सल्यूट सल्यूट सल्यूट सल्यूट।
0: हम तो छोटा टीचर है, तो कुछ एक्सपर्ट स्टूडेंट है, तो एक पंचायत ऑफिसर है,
1: जी वाह,
0: ये सारे मतलब बढ़िया नौकरियां ते।
1: क्या बात है जी, सल्यूट है जी।
0: चलो सलाम है इन्हां नूं, फिर टीचरां नूं जिहदे करके असीं तुहाडे नाल जुड़े हां जी। फिर मैं एक फिर साझा जा गाना है जी बाबे नानक का, वो सुना देना धार्मिक जहा।
1: हाँ बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी,
0: ढुकदा बाबा भी तो टीचर ही साडा,
1: वो टीचर ने जी बिल्कुल जी।
0: हाँ उन्हां दे तां असीं देख लो जिहड़ी बाणी पढ़दे आ ते उन्हां दीआं मेहरबानियां नाल ही सारा कुछ।
1: बिल्कुल जी, उन्हां दा आशीर्वाद है।
0: संकड़े दी तड़ी नूं तेरा चित लाउण वाला, संकड़े

0: कर रहा
1: जी।
0: ना, ये तो साडे कोल जी ने कब्बे जी हुंदे ने,
1: नहीं ठीक है ठीक, आउण दो जी।
0: कुट पवाण वाले, जेड़ा कोई साडे शेर नाल सहमति करूगा ओनू कुट पैणी लाजमी है। वो मुझे याद कर रही होगी,
1: ठीक है जी,
0: वो मुझे याद कर रही होगी,
1: कर रही होगी।
0: उस पे क्या क्या गुजर रही होगी।
1: ओए होए होए होए होए होए होए जी
0: झूठी मुस्कान लेके चेहरे पर वो
1: जी
0: घर के सब काम कर रही होगी।
1: ओए होए होए होए, भांडे धोरे, कपड़े मांज रही होगी, जो भी
0: सारा
1: मतलब
0: सारा
1: कमाल
0: सारा कुछ
1: कमाल
0: ही, सारा कुछ, सारा सारा कुछ ही, सारा कुछ।
1: जी
0: वक्त शाम का होने वाला है, वक्त
1: जी
0: शाम का होने वाला है, अब वो छत से उतर रही होगी। सिर्फ मैसेज से बात की उसने, कॉल
1: जी,
0: करने से डर रही होगी।
1: डर रही होगी, वाह
0: दूरियां मैं भी सह नहीं सकता,
1: जी,
0: वो भी घुट घुट के मर रही
1: मर
0: होगी।
1: रही होगी।
0: वापसी की मेरी खबर सुनकर,
1: जी
0: वापसी की मेरी खबर सुनकर जाने कितना सबर रही होगी।
1: ओ हो, वाह
0: वो
1: जी,
0: मुझे याद कर रही होगी।
1: वाह जी वाह जी वाह, बहुत खूब
0: लो फिर मेरा छोटा जा गाना होर सुन के, तो फिर मैं दोबारा
1: जी।
0: जज्बात ही होंगे ने बाबू,
1: ओही
0: आपा
1: है बस,
0: पेश कर
1: बिल्कुल जी,
0: देने थोड़ी
1: बिल्कुल
0: देर।
1: बिल्कुल, जज्बात दी ही गलबात है, बिल्कुल
0: हुण ए ना तुहानू तां ही कहना, जदों शमी भाई तुसीं आउंदे नहीं ना, तुसीं ये सोच के वेखो भी ओह जज्बात इन्ने दिन अंदर घुटे रहिंदे ने उत्ते, जिवें हुंदा ना ढोल चो जिन बंद करके उत्ते ढक्कण दे दित्ता, फिर तबीज बन के भी इस चो बाहर नहीं निकल सकदा। इस करके तुहानू तां कहने भी सारे हफ्ते दे जज्बात असीं शनिवार ऐतवार कढ़ने हुंदे ने,
1: बिल्कुल जी
0: ते
1: बिल्कुल, मोहब्बत जिंदाबाद है जी।
0: उस दिन जिदन तुसी आउंदे नहीं, फिर सानू ऐ लगता भी हुण आ जिन ते साडा निकलदा नहीं, जिन कटण वाला बाबा साडे काबू आ जाए ना किते। लो फिर मैं सुना रही हूं,
1: इरशाद
0: अज साडे मान साहब दा, बब्बू मान साहब दा गाना मैं चुनिया सी।
1: जी,
0: गल फिर कहानी उत्थे ही जानी है जिथे जांदी है। कहने हंजू रुकण दा नाम नहीं लैंदे, होके मुकण दा नाम नहीं लैंदे, चंद तस्वीरां खत, चंद तस्वीरां खत माण दी कमाई है, चंद तस्वीरां खत मुकद्दर दी कमाई है, अज
1: अरे
0: मैनू फेर तेरी याद आई है, अज मैनू फेर तेरी याद आई है।

कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले, जैसे सावन से कहीं प्यारी घटा छा के मिले। कब के बिछड़े, कब के बिछड़े, आज मुद्दत के रात महकी है, दिल धड़कता है, सांस बहकी है, प्यार छलका है प्यासी आंखों से, सुर्ख होठों से आग दहकी है। महकी हवाओं से, बहकी फिजाओं से, दो प्यासे दिल जो मिले, जैसे मैं कश, जैसे मैं कश,

0: करे सलामा, माड़े नू तू पाए लगामा, माड़े कढ दे डर दे हाड़े, निसुण देश दिए सरकारे, तेरे जग तो कम न्यारे। चोर बजारा आत्मचाई, चोर बजारा आत्मचाई, किते भी होवे ना सुनवाई, तेरे चाकर बने दलारे, निसुण देश दिए सरकारे, तेरे जग तो कम न्यारे। दिते कढ गरीबा दे कैल, दिते कढ गरीबा दे कैल, आया 1200 दा बिल, मिन्नतां कर कर के सब हारे, निसुण देश दिए सरकारे, तेरे जग तो कम न्यारे। किधरे चल दियां हड़तालां, किधरे चल दियां हड़तालां, किते बंद दियां ने कालां, किते बंद दियां ने कालां, लगदे कन्न पाड़वे नारे, निसुण देश दिए सरकारे, तेरे जग तो कम न्यारे। तेरे किसे ना कढ़ने हाड़े, तेरे किसे ना कढ़ने हाड़े, टोनी हो गए कमी कट्ठे सारे, टोनी हो गए कमी कट्ठे सारे, करने तेरे कूच किनारे, निसुण देश दिए सरकारे, तेरे जग तो कम न्यारे, निसुण देश दिए सरकारे, तेरे जग तो कम न्यारे। धन्यवाद जी।
1: रेडियो दे प्यारे श्रोतियो, हुण मैं सदा देण जा रहा शहीद भगत सिंह नगर जिले दे विच एक पेंडू स्कूल दे विच कंप्यूटर अध्यापक वजों सेवा करदी हुई शायरा नीतू जसल नूं। नीतू जसल भावें किते वजों कंप्यूटर अध्यापक है, पर उस दे नाल दी नाल बड़े ही उह सूखम भावी कवितावां जिहड़ियां रचदी है। कलियां उह कवितावां नहीं, उह कहानियां भी लिखदी है। ते साडी कामे फल दे विच पहली वारी आ रहे ने, असीं उहनां दा दुआबा रेडियो दे मंच ते निघा स्वागत करदे हां। नीतू जसल जी, तुहाडा स्वागत है।
2: नमस्कार दोस्तो, मैं हाँ तुहाडी अपनी लेखिका नीरू जसल, ते अज दुआबा रेडियो ते पहली बार तुहाडे रूबरू होण जा रही हाँ अपनी इस प्यारी जिही गज़ल नाल, जिसका टाइटल है भखदा रिहा। कश्तियां दा भार उंज चुकदा रिहा, कश्तियां दा भार उंज चुकदा रिहा, पर समुंदर अंदरों भखदा रिहा, पर समुंदर अंदरों भखदा रिहा। मैं बनाया सी दिलों ए राबता, मैं बनाया सी दिलों ए राबता, पर तू मेरा जिसम ही तकदा रिहा। करकतल तू अपने ते हुबदें, करकतल तू अपने ते हुबदें, पर मेरी दरिया दिली तो मचदा रिहा। रोग मैनू ला अवला इश्क दा, रोग मैनू ला अवला इश्क दा, क्यों तू मैथों दूर फिर भजदा रहा। मेरिया अखां दे विच तू रड़कदें, मेरिया अखां दे विच तू रड़कदें, पर मेरी धड़कन दे विच वसदा रहा। जिसम मेरा रूह तो वांझा कर गया, जिसम मेरा रूह तो वांझा कर गया, पर रगां विच दौड़दा भजदा रहा। अंदरी वड़ वड़ तू भुब्बा मारदें, अंदरी वड़ वड़ तू भुब्बा मारदें, ते गली विच खिड़ खिड़ा हसदा रहा। तलखियां दे दौर विच तू ऐ बशर, तलखियां दे दौर विच तू ऐ बशर, सिसकियां नू रोज़ ही दबदा रहा, सिसकियां नू रोज़ ही दबदा रहा। धन्नवाद जी।
1: साडी कामे फल दे विच हाजिर हो रहे ने साडी धार्मिक नगरी गुरुआं पीरां ते शहीदां दी धरती श्री अमृतसर साहब तों, मेरी मुरादे कुलदीप दराजके जी तों। कुलदीप दराजके जी साडियां महफलां दे शिंगार बणदे ने, असीं उहनां नूं अज दी महफल दे विच सद्दा दित्ता ते उहनां ने साडे सद्दे नूं प्रवान करके उह हाजरी लाउण आए ने। दराजके जी, तुहाडा दुआबा रेडियो दे मंच ते निघा स्वागत है।
3: कलड़ा उमरां दी मिट्टी च मिल गई, साडे सुपड़ियां नूं कोई ना माण मिलिया। उच्चे तख्त तों उजड़ जा

0: मिलिया आफतों चल दे रहे हंस के कदे सिदक ना साडा डोलिया जी फट किरत ते से अस्त ने रज लाए साडा सबर जबर ने रुलिया जी।
1: दुआबा रेडियो दे प्यारे श्रोतियो, हुण असीं तुहानूं इक वार कनेडा लै के जा रहे हां। कनेडा दे विच साडी शायरा रहिंदी है बलवीर कौर ढिल्लों, जिहदी कविता कह रही है भी इंसान जिहड़ा ओह कुदरत दी रजा दे विच रहिंदा है, कुदरत नाल मिल के रहिंदा है, ते ओह किवें कहिंदे ने, की कहिंदे ने, आओ उन्हां तों सुणीए। बलवीर कौर ढिल्लों जी, तुहाडा स्वागत है।
2: ਡਿੱਗੇ

मैनू जानी ना तिला बौकर बन के हूंज देऊं, जे आकड़ छड़ी ना अपनी तैनू नक्शे तो पूंज देऊं, जे आकड़ छड़ी ना अपनी तैनू नक्शे तो पूंज देऊं, मैं पक्षियां दी झल नहीं।

तेरा हुण तख्त हिला देना जेने तू तख्त ते चढ़ बैठे ओ कुरनावे लबांगे जिस दे विच जावड़ बैठे मैं।

गल तेनू साड़ी मननी ही पैनिया, आकड़ जो तेरी पननी ही पैनिया। गल तेनू साड़ी मननी ही पैनिया, आकड़ जो तेरी पननी ही पैनिया। असी दिन रात

करने लगा के पंजाब देख ले, कई कई दिन बेहिसाब देख ले। तरने लगा के पंजाब देख ले, कई कई दिन बेहिसाब देख ले।

0: एहसास दवाण,
1: हाँ
0: उन्हें
1: जी
0: तो टाइम टू टाइम पूछ के कि हाँ तू की सिखिया नवा की सिखिया, कुछ क्योंकि साढ़े लिए बच्चों के लिए साढ़े
1: हाँ जी
0: मोटिवेशन का सोर्स होना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल
0: जब तक उन्होंने मोटिवेट मोटिवेट नहीं करांगे, उन्हों का मोटिवेशन नहीं होएगी उन्होंने अंदर, तो वो कुछ भी नहीं करेंगे,
1: नहीं कर सकते।
0: वो बस
1: सहबाना जी
0: चले जाएंगे।
1: अज दे
0: हाँ जी
1: ज्यादातर बच्चे जिहड़े हैगे ना
0: हाँ जी हाँ
1: ओह
0: जी बिल्कुल
1: पढ़ाई नूं एक बोझ दी तरह लैंदे आ,
0: बिल्कुल
1: जिवें एक बोझ पिया हुंदा वी तां करनी ही पैणी है, पढ़ना पैणा है। एक उहनां नूं शौक नहीं हैगा, मजबूरी समझदे है। अजिहा क्यों हैगा?
0: हाँ ये भी देखो एक इस नूं असीं जोड़ सकते हैं कि काफी ज्यादा प्रचलन हो गया है, साडा सोशल मीडिया का भी काफी रोल है इस दे विच। काफी हद तक बच्चे यूट्यूब चलाना या फिर फेसबुक इंस्टाग्राम ये
1: हाँ जी
0: सारी
1: हाँ जी
0: चीजा यूज करने दे लिए ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं
1: हाँ
0: एज
1: जी
0: कंपेयर टू अपनी स्टडीज दे लिए।
1: बिल्कुल जी
0: तो उन्हें गेमिंग ऑनलाइन गेम्स का बड़ा क्रेज हो गया है, ते सॉन्ग्स दा लगा लो हर एक चीज उन्हें अट्रैक्ट करती है जेडी एंटरटेनमेंट वाली है। बट बच्चियां नू ये चीज देखो ध्यान च रखने की बहुत जरूरत है कि अगर तो तुसी अपनी सारी लाइफ इंजॉय करनी है तो तुहानू अपनी लाइफ दा ये सब तो सेंसिटिव और सब तो इम्पोर्टेंट फेज जो चल रहे है, जो कि एक लाइक 10+2 वाले फेज है,
1: हाँ जी
0: इस फेज दे विच और अपने ग्रेजुएशन वाले फेज नू थोड़ा जा होर सीरियस लेके चलन दी जरूरत है। अगर बच्चे इन्हां सालां दे विच इन्हां 4-5 सालां दे विच कड़ी मेहनत कर लैणगे और इन्हां सारे मनोरंजन दे साधनां नू लिमिटेड रखणगे, मैं ये नहीं कहंदी कि तुसी बिल्कुल छड़ दो,
1: हाँ जी हाँ जी
0: लिमिटेड रखो, टाइम लिमिट कर लो, ठीक
1: ठीक
0: है,
1: है
0: ते ओदे नाल बड़ा फर्क पै सकता है कि वह एक लिमिट टाइम लिमिट्स और जिन्होंने आप कह दी कि टाइम टेबल बना के चल पैन कि हाँ असं इन्ने क टाइम लिए ये चीज यूज करनी है बस दैट्स ऑल।
1: हाँ
0: तो
1: जी
0: ये भी और बच्चे वो चीज करके समझते उन्होंने, मतलब बच्चों ये चीज दी बिल्कुल क्योंकि लैक ऑफ मोटिवेशन है, जिदा कि असीं पहला गल करिए कि जो बच्चों च लैक ऑफ मोटिवेशन है, मोटिवेशन नहीं है उन्होंने, कोई अंदरूनी तौर पर काम करने के लिए कुछ खिच है ही नहीं, उन्हों की जिंदगी का कोई उद्देश नहीं,
1: बिल्कुल
0: उद्देश
1: जी
0: ही नहीं वो भटक रहे ने, तो
1: हाँ जी
0: वो उन्होंने सारिया चीजा वो जिहड़ियां स्टडी वगैरह सब कुछ बोझ लगता है कि यदा तो
1: बिल्कुल
0: कोई फायदा नहीं है।
1: हाँ जी हाँ जी
0: बट आई एम श्योर कि जदों इहो जे बच्चे जाके अगे जाके थोड़ा ग्रेजुएशन काइंड ऑफ जदों इहो जे बच्चों नूं थोड़ा जिहा पता लगता है कि हाँ वाकई कुछ उन्हां नूं मोटिवेशन दा सोर्स मिलता है कि हाँ भी वाकई असीं अपना टाइम वेस्ट कर रहे सीगे, हुण जो टाइम है असीं अगर कर लिए, तो इहो जे बच्चे बहुत अगे वध जांदे ने, बस
1: बिल्कुल
0: एक
1: जी
0: मोटिवेशन दी लोड़ हुंदी है उन्हां नूं।
1: सही राह दिखाने की लोड़ है।
0: बिल्कुल उद्देशहीनता ही उन्हां नूं जिहड़ी है वो स्टडी दे प्रति उन्हां दा जिहड़ा नकारात्मक एटीट्यूड है वो उद्देशहीनता तो ही पैदा होंदा है। जब तक उन्हां दा उद्देश नहीं है, कोई गोल नहीं है लाइफ दे विच, तां वो अपनी स्टडीज नूं सब कासे नूं बोझ समझणगे।
1: सही गल है जी
0: ते सिक्ख्या दा
1: हाँ
0: सिर्फ मतलब ये नहीं है कि वो तुहानूं सिर्फ तुहाडे रोजगार तक लेके जाएगी, बल्कि जो 10वीं 12वीं तक दी सिक्ख्या है वो तो सानूं एक अच्छा नागरिक बनने दे लई भी बहुत जरूरी है।
1: जरूरी है। हाँ जी हाँ जी
0: सानू अपने सारे जेडे कर्तव्य है साडे देश दे प्रति जो कर्तव्य है या फिर साडियां जेडियां रिस्पॉन्सिबिलिटीज ने, असी जो की
1: हाँ
0: करना
1: जी
0: है वो सारियां चीजा और सानू केड़े केड़े अधिकार संविधान ने सानू दिते ने, उन्हां सारियां चीजा बारे जाणू कराने दे लई जो साडा 10वीं 12वीं तक दा सिलेबस है वो काफी है, अगर बच्चे इस नू इंटरेस्ट लैके पढ़न।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल हाँ
0: बट बच्चे अक्सर इहो जा नहीं करदे, उन्हां नू सिर्फ एक रट्टे वाली आदत पै चुकी है साडे
1: नंबर
0: जो,
1: लाइन तक सीमित हो जाने।
0: हाँ बिल्कुल वो समझते हैं कि असी एज इट इज रट्टा मार के असी अगर किताबां चो देख देख के लिख दांगे तां उहदे नाल साडे बस नंबर वध जाण, बट उहनां नू कुछ नवा लर्न करन दी जो एक होना चाहिए है, खिच होनी चाहिए है कि सानू लर्न असी की कीता, वो चीज बहुत घट है बच्चियां च।
1: हाँ जी एक गल होर भी देखी है, जिहड़े अज दे विद्यार्थी ना वो लंबा समा पढ़ाई करन दे मूड च नहीं हुंदे,
0: नहीं हुंदे
1: उहनां
0: जी
1: दा ए हुंदा वी 10वीं 12वीं कर लिए तो उस तो बाद कोई कम मिल जाए, चंगी नौकरी मिल जाए जिहदे चंगा पैसा आउंदा होवे, ते असीं अपनी जिहड़ी हैगी अगली लाइफ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ।
0: ਬਿਲਕੁਲ
1: ਅਤੇ
0: ਬਿਲਕੁਲ
1: ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਪੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ,